0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी वजीर दिफा कोइज़मी शिंजिरू ने इतवार के रोज सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर बराए कौमी दिफा आंग्यो बाक के साथ बातचीत की। उन्होंने जजीरनुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए जापान और जनूबी कोरिया के साथ साथ जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वुज़रा ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि वो मुस्तहकम मुस्तकबिल पर मबनी दिफाई तआवुन और तबादलों को मजीद फरोग देने के लिए राबते बरकरार रखेंगे। कोइज़मी ने जो ओहदा संभालने के बाद पहली बार जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं इतवार की सुबह आन से तकरीबन एक घंटे तक मुलाकात की। ये बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी वजारती तबादलों के एक जुज के तौर पर हुई। दोनों वुज़रा ने इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए तलाश और बचाव की मुश्तरका मशकें दोबारा शुरू करने की बहुत तारीफ की। जापान की बहरी सेल डिफेंस फोर्स और जनूबी कोरियाई बहरिया की ये मशक तकरीबन 9 सालों में पहली बार रवामा मुनक्किद हुई। शिमाली कोरिया अपनी जौहरी और मिजाइल तरक्की जारी रखे हुए है और रूस के साथ फौजी तआवुन को गहरा कर रहा है। वुज़रा ने जजीरा नुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक बनाने और देरपा अमन के कयाम के लिए अमरीका के साथ दो तरफा और सैफरीकी तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। एटमी बमबारी के मुतासरीन हिबाकुशा कहलाने वाले अफराद के एक ग्रुप और दीगर ने इस बात की तस्दीक की है कि जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के ख्वाब की ताबीर पाने की गर्ज से उन्हें नौजवान नस्ल के लिए अपनी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए। जौहरी हथियारों के खात्मे की जापान मुहिम नामी इस ग्रुप की तश्कील के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबन 60 अफराद ने टोक्यो में इतवार को मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ग्रुप के सरबरा तनाका तेरूमी ने तकरीर की। वो एक और हिबाक्षा ग्रुप निहोन हिदांक्यो के शरीक सरबरा भी हैं। निहोन हिदांक्यो ने जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के असूल की कोशिशों के लिए 2024 में नोबेल अमन इनाम हासिल किया था। जनाब तनाका ने इस मौके का इस तवक्को का इजहार किया कि निहोन हिदांक्यो को ये एजाज मिलने से जौहरी हथियारों के खात्मे की जानिब रफ्तार बढ़ेगी। तहम उन्होंने तस्लीम किया कि वो जंग छेड़े जाने की तरफ तेजी से तब्दील होती महसूस कर रहे हैं। तनाका ने इसे तब्दील करने की जरूरत पर रोशनी डाली जिसे उन्होंने मौजूदा चैलेंजिंग सूरत हाल के तौर पर बयान किया। उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को इस हकीकत से रोशनास करवाने की अहमियत है कि जंग से ज्यादा बेमानी कुछ नहीं है। जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स GSDF का कहना है कि उसने पहली बार मुल्क के इंतहाई मशरकी जजीरे पर जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। तजियाकार इस तैनाती को मुल्क की बहरुल कायल की अतराफ के दिफा को तकवियत देने की कोशिश का हिस्सा करार देते हैं। GSDF ने इतवार के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि उसने इस महीने मिनामी तोरीशिमा जजीरे पर टाइप 12 किस्म का जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर और हदफ के तयन के लिए जासूस ड्रोन तैनात किए हैं। जमीन से समंदर पर मार करने वाले टाइप 12 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल इस बार जजीरे पर नहीं लाए गए। मिनामी तोरीशिमा टोक्यो के ओगासावारा जजायर का हिस्सा है और ये जापान के मरकजी जजीरे होनशु से तकरीबन 2000 किलोमीटर जनूब मशरक में वाके है। GSDF को उम्मीद है कि वो अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले माली साल के अवाइल से फायरिंग की मशकें शुरू कर देगी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। चीनी वजारत तजारत का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और इदारों को मुल्क की बरामदी कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वेनेजुएला में बुध को आए 2 तबाहकुन जल्जलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले अफराद को तलाश कर रही हैं। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 30 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के 5 दिन बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,700 से अधिक हो गई है और इसके और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जीवित बचे लोगों की बहुत बड़ी तादाद को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। बुधवार को वेनेजुएला में आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 27 देशों से 2,200 से अधिक बचाव कर्मी वेनेजुएला भेजे गए हैं, जो इन भूकंपों के बाद लगातार आ रहे झटकों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश के काम में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा, कम से कम 2,500 इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह से ढह गई हैं। हम 10,000 बॉडी बैग मंगवा रहे हैं, जिस पर यहाँ के अधिकारी भी सहमत हैं। ब्राज़ील से 2-1 से हारने के बाद जापान पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान का मुकाबला सोमवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में 6ठी रैंकिंग वाले ब्राज़ील से हुआ। गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए ब्राज़ील ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन जापान के गोलकीपर सुजुकी ज़ायोन डटे रहे। 29वें मिनट में सानो काइशु गेंद पर लपके और मैदान में तेजी से भागते हुए उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से दाहिने पैर से जोरदार किक लगाकर जापान के लिए पहला गोल किया। हाफ टाइम तक 1-0 से पिछड़ रहे ब्राज़ील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में पेनल्टी बॉक्स में लगातार क्रॉस भेजकर दबाव बढ़ाया। 56वें मिनट पर कासेमीरो ने बाईं ओर से आए क्रॉस को सिर से मारकर गोल दागा और ब्राज़ील को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद तानाका आओ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम हुए, जिसका फ़ायदा उठाकर गैब्रियल मार्टिनेली अतिरिक्त समय में विजय गोल दागने में कामयाब हो गए और इस तरह जापान का नॉकआउट राउंड में पहली जीत दर्ज कराने का 5वां प्रयास एक बार फिर विफल रहा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि उनकी सरकार विदेशी निवेश की और बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रही है। ताकाइची ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। ताकाइची ने सोमवार को नवगठित विदेशी निवेश समिति की पहली बैठक को संबोधित किया। मई में विदेशी मुद्रा विनिमय एवं विदेशी व्यापार अधिनियम में संशोधन पारित होने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। ताकाइची ने कहा, हम संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की जांच क्षमता सुधारते हुए विभागों के बीच समन्वय की कमी से बचना चाहते हैं। क्षमता सुधारने के लिए सरकार जानकारी साझा करने की व्यवस्था को समग्र रूप से मजबूत करेगी। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय समिति की सह अध्यक्षता करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करेंगे। समिति का प्राथमिक कार्य सरकारों और निवेशकों के उन प्रस्तावों की समीक्षा करना है जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ खास उद्योगों की जापानी कंपनियों के शेयर प्राप्त हो सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए बुधवार से भारत की यात्रा कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ताकाइची की मोदी से बृहस्पतिवार को मुलाकात होने वाली है। शिखर बैठक के मौके पर जापान और भारत आर्थिक सुरक्षा व एआई पर दस्तावेज जारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं। चीन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा संबंधी दस्तावेज में संभवतः दोनों देशों द्वारा आर्थिक दबाव का विरोध करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी निजी समन्वय को प्राथमिकता और बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जा सकता है। एआई संबंधी दस्तावेज में साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इसमें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की बात भी शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि ताकाइची जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च आर्थिक विकास बनाए रखने वाले देश भारत के साथ सामरिक साझेदारी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। जापान की प्रमुख वाहन कंपनियों ने मई में चीन में नए वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बिक्री पर असर पड़ा। चीन में वाहन बेचने वाली जापान की 5 प्रमुख कंपनियों में से 4 का कहना है कि उनकी कारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। सुबारू की बिक्री में 53.3%, जबकि होंडा की बिक्री में 48.6% की भारी गिरावट आई। निस्सान की बिक्री में 34.9% और टोयोटा की बिक्री में 31.7% की गिरावट देखी गई। केवल माज़्दा की बिक्री में 4.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। चीन में पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि दूसरी ओर ईवी बाजार में विस्तार हो रहा है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देसु।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: सो देसु का?
1: अच्छा।
2: योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्सु देसुता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोह देशिता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तनोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तनोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तनोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तनोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: तनोशिकत्ता देसु, सुगोकु तनोशिकत्ता देसु।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देसु,
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देसु
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकात्ता देसु
1: भी है, जो
5: ई देसु
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु, शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तनोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तनोशी ल्योको देशिता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्तो देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देश्टा।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देश्टा का?
3: सुगोकु तानोशिकात्ता देस। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के 5 दिन बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,700 से अधिक हो गई है और इसके और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जीवित बचे लोगों की बहुत बड़ी तादाद को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। बुधवार को वेनेजुएला में आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 27 देशों से 2,200 से अधिक बचावकर्मी वेनेजुएला भेजे गए हैं, जो इन भूकंपों के बाद लगातार आ रहे झटकों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश के काम में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा, कम से कम 2,500 इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह से ढह गई हैं। हम 10,000 बॉडी बैग मंगवा रहे हैं, जिस पर यहाँ के अधिकारी भी सहमत हैं। ब्राज़ील से 2-1 से हारने के बाद जापान पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान का मुकाबला सोमवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में 6ठी रैंकिंग वाले ब्राज़ील से हुआ। गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए ब्राज़ील ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन जापान के गोलकीपर सुजुकी ज़ायोन डटे रहे। 29वें मिनट में सानो काइशु गेंद पर लपके और मैदान में तेजी से भागते हुए उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से दाहिने पैर से जोरदार किक लगाकर जापान के लिए पहला गोल किया। हाफ टाइम तक 1-0 से पिछड़ रहे ब्राज़ील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में पेनल्टी बॉक्स में लगातार क्रॉस भेजकर दबाव बढ़ाया। 56वें मिनट पर कासेमीरो ने बाईं ओर से आए क्रॉस को सिर से मारकर गोल दागा और ब्राज़ील को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद तानाका आओ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम हुए, जिसका फ़ायदा उठाकर गैब्रियल मार्टिनेली अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागने में कामयाब हो गए और इस तरह जापान का नॉकआउट राउंड में पहली जीत दर्ज कराने का 5वां प्रयास एक बार फिर विफल रहा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि उनकी सरकार विदेशी निवेश की और बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रही है। ताकाइची ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। ताकाइची ने सोमवार को नवगठित विदेशी निवेश समिति की पहली बैठक को संबोधित किया। मई में विदेशी मुद्रा विनिमय एवं विदेशी व्यापार अधिनियम में संशोधन पारित होने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। ताकाइची ने कहा, हम संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की जांच क्षमता सुधारते हुए विभागों के बीच समन्वय की कमी से बचना चाहते हैं। क्षमता सुधारने के लिए सरकार जानकारी साझा करने की व्यवस्था को समग्र रूप से मजबूत करेगी। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय समिति की सह अध्यक्षता करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करेंगे। समिति का प्राथमिक कार्य सरकारों और निवेशकों के उन प्रस्तावों की समीक्षा करना है जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ खास उद्योगों की जापानी कंपनियों के शेयर प्राप्त हो सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए बुधवार से भारत की यात्रा कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ताकाइची की मोदी से बृहस्पतिवार को मुलाकात होने वाली है। शिखर बैठक के मौके पर जापान और भारत आर्थिक सुरक्षा व एआई पर दस्तावेज जारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं। चीन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा संबंधी दस्तावेज में संभवतः दोनों देशों द्वारा आर्थिक दबाव का विरोध करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी निजी समन्वय को प्राथमिकता और बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जा सकता है। एआई संबंधी दस्तावेज में साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इसमें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की बात भी शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि ताकाइची जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च आर्थिक विकास बनाए रखने वाले देश भारत के साथ सामरिक साझेदारी स्थापित करने की कोशिश कर रही है। जापान की प्रमुख वाहन कंपनियों ने मई में चीन में नए वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बिक्री पर असर पड़ा। चीन में वाहन बेचने वाली जापान की 5 प्रमुख कंपनियों में से 4 का कहना है कि उनकी कारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। सुबारू की बिक्री में 53.3%, जबकि होंडा की बिक्री में 48.6% की भारी गिरावट आई। निस्सान की बिक्री में 34.9% और टोयोटा की बिक्री में 31.7% की गिरावट देखी गई। केवल माज़्दा की बिक्री में 4.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। चीन में पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि दूसरी ओर ईवी बाजार में विस्तार हो रहा है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो ताबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行

0: たね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
2: पहले हारू जी ने मियाँ से कहा,
3: ओ काएरी नासाई,
1: आओ आओ।
3: नागानो वा दो देशता का?
1: नागानो कैसा रहा?
2: मियाँ ने उत्तर दिया,
4: सुगोकु तनोशिकत्ता देस।
1: बहुत मजा आया।
4: शाशिन ओ ताकसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
4: सोरे करा ओ सोबा मो तबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
4: तोतेमो ओइशिकत्ता देस।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
2: ये सुनकर हारू जी ने कहा,
3: सो देस का,
1: अच्छा,
3: योकात्ता देस ने,
1: ये तो अच्छी बात है।
2: मियाँ ने आगे कहा,
4: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देस्ता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
2: फिर ताम ने कहा,
5: तनोशी ल्योको देस्ता ने,
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
2: दोस्तों, मियाँ की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
4: सुगोकु तनोशिकत्ता देस,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
2: इस वाक्य में
6: सुगोकु
2: का अर्थ है बहुत और
6: तनोशिकत्ता देस
2: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
2: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
6: तनोशी,
2: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
6: कत्ता।
1: तो
6: तनोशी देस,
1: यानी मजेदार है, का भूतकाल रूप होगा
6: तनोशिकत्ता देस,
1: यानी मजेदार था।
2: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
6: तनोशिकत्ता देस, सुगोकु तनोशिकत्ता देस।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
6: ओइशिकत्ता देस,
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
6: ओइशी देस
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
6: योकात्ता देस
1: भी है, जो
6: ई देस,
1: यानी अच्छा है, का भूतकाल रूप है।
2: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
2: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
6: शिनसेत्सुना,
2: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
6: शिनसेत्सु देस, शिनसेत्सु देस।
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
6: शिनसेत्सु देशता।
2: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
6: तनोशी ल्योको देस,
2: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
6: तनोशी ल्योको देशता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
7: ओसाका वा दो देशता का?
8: योकात्ता देस, तोतेमो निगियाका देशता।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
7: ओसाका वा दो देशता का?
1: ओसाका कैसा रहा?
6: ओसाका
2: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
6: दो
2: का मतलब है कैसा, और उसके बाद आया है देशता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
8: योकात्ता देस,
2: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
6: योकात्ता
1: ई विशेषण
6: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
8: तोतेमो निगियाका देशता,
2: बहुत चहल पहल थी।
6: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
6: निगियाका देशता
1: है ना विशेषण

0: निगी या काना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
2: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
0: ओसाका वा दो देशिता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगी या का देशिता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
0: सुबाराशी। सुबाराशी।
3: सुबाराशिकात्ता देस।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: ओकाएरी नासाई।
0: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
0: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
0: ओकाएरी नासाईमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओकाएरी नासाई। नागानो वा दो देशिता का?
5: सुगोकु तानोशिकात्ता देसु। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
2: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
2: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: 長野के लोग बहुत हमदर्द थे।
1: ताम कहती है,
2: तनोशी ल्योकोर देश्ता ने।
0: पुल्लुत सफर था ना?
1: लगता है उसका नागानो का सफर बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी नागानो जाऊं।
0: छुट्टियों में जरूर जाएं। लेकिन फिलहाल सामीन को आज का मकालमा एक बार फिर सुनवाते हैं।
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत मज़ा आया।
4: सुगोकु तानोशिकत्ता देस।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से अपने किसी तजर्बे के बारे में तासुरात बता सकते हैं।
0: सुगोकु के मानी है वाकई ये बहुत ज्यादा, और तानोशिकत्ता देस यानी मजा आया। आज का नुक्ता माजी के किसी तजर्बे के बारे में तासुरात के इजहार से मुतालिक है। ये तो आपको याद ही होगा कि फेल का सिग़ा माजी बनाने के लिए उसके आखिरी मस को मश्ता में तब्दील किया जाता है। इसमें सिफत या इस्म का माजी का सिगा इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले ई इसमें सिफत को देखते हैं। ये वो इसमें सिफत होते हैं जिनका अख्तिताम ई पर होता है। मसलन तानोशी यानी मज़ा आ रहा है। इसका माजी का सिगा बनाने के लिए इसके आखिरी ई को हटाकर कत्ता लगाया जाएगा। चुनांचे तानोशी दिस का माजी का सिगा होगा तानोश कत्ता दिस यानी मज़ा आया।
1: तो सामईन सुनिए और दोहराइए। ख्याल रखिए कि कत्ता के तलफ़ में का और ता के दरमियान हल्का सा वक्फा है।
0: आज के मकालमे में एक और मिसाल ओइशकत्ता देस है, जो ओइशी देस यानी मज़ेदार है का माजी का सिगा है। इसी तरह योकत्ता देस है, जो ई देस यानी अच्छा है का माजी का सिगा है।
1: ई का सिगा माजी योकत्ता आम तरीका कार से हटकर है, ऐसा ही है ना?
0: जी हाँ, इसे इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा। ना इसमें सिफत और इस्म का माजी का सिगा बनाने के लिए देश को बदल कर देशता करना होगा।
1: ना इसमें सिफत के बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है।
0: जी हाँ, ये इसमें सिफत अगर इस्म से पहले आए यानी इस्म की तशरीह करे तो उसके आखिर में इजाफी ना लगता है। मसलन शिनसित्स यानी हमदर्द किसी इस्म से पहले शिनसित्स ना हो जाएगा। जुमले में अकेला इस्तेमाल होने की सूरत में ये शिनसित्स देश होगा। शिनसित्सु देस का माजी का जुमला बनाने के लिए आखिरी देस को देशता करना होगा। चुनाचे ये बनेगा शिनसित्सु देशता। अगर जुमले में देस से पहले इस्म है जैसा कि तानोशी रियोको देस, तो इसके लिए भी यही तरीके कार होगा। चुनाचे इसका माजी का सेगा होगा तानोशी रियोको देशता।
1: और अब सफर के तासरात से मतलब एक मकालमा सुनिए।
4: ओसाका वा दो देशता का?
5: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: और अब मकालमे की तशरीह।
4: ओसाका वा दो देशता का?
1: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देशता का के मायनी है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देशता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
5: よかったです。
1: अच्छा था।
0: よかった ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
5: とてもにぎやかでした。
1: बहुत पुर रौनक था।
0: とても के मायनी है बहुत, और にぎやかでした ना इसमें सिफत にぎやかな यानी पुर रौनक का माजी का सिगा है।
1: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
6: ओसाका वा दो देशता का? योकात्ता देस। とてもにぎやかでした。
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। आप सफ़र से वापस आए हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि सफ़र शानदार था। शानदार एक ई इसमें सिफत है।
6: सुबाराशी, सुबाराशी।
0: तो सामीन कोशिश करें।
5: सुबाराशिकत्ता देस, सुबाराशिकत्ता देस।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में हारूसान ने इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें।
3: ओकायरी नासाई।
0: ओकायरी नासाई यानी दोबारा खुश आमदेद। कहीं बाहर से वापस आने वाले फर्द से कहा जाता है। अफराद खाना या

0: 楽しい旅行でしたね。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। मियां ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
3: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
2: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइने हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
3: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
2: मुसाफिर खिड़कियों से बाहर का नजारा करते हैं या फिर बेंतो यानी खाने के डब्बों से लुत्फ अंदोज होते हैं।
3: कई मुसाफिर किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारते हैं, जबकि कुछ ऊँगते हुए भी नजर आते हैं। डिब्बे पुरसुकून और साफ सुथरे होने के बाद सफर नहायत खुशगवार होता है।
2: जी, और यकीनन आरामदेह भी।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 30 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के 5 दिन बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,700 से अधिक हो गई है और इसके और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जीवित बचे लोगों की बहुत बड़ी तादाद को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। बुधवार को वेनेजुएला में आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 27 देशों से 2,200 से अधिक बचाव कर्मी वेनेजुएला भेजे गए हैं, जो इन भूकंपों के बाद लगातार आ रहे झटकों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश के काम में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा, कम से कम 2,500 इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह से ढह गई हैं। हम 10,000 बॉडी बैग मंगवा रहे हैं, जिस पर यहाँ के अधिकारी भी सहमत हैं। ब्राज़ील से 2-1 से हारने के बाद जापान

पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान का मुकाबला सोमवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में छठी रैंकिंग वाले ब्राज़ील से हुआ। गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए ब्राज़ील ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन जापान के गोलकीपर सुजुकी ज़ायोन डटे रहे। 29वें मिनट में सानो काइशू गेंद पर लपके और मैदान में तेज़ी से भागते हुए उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से दाहिने पैर से ज़ोरदार किक लगाकर जापान के लिए पहला गोल किया। हाफ टाइम तक 1-0 से पिछड़ रहे ब्राज़ील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में पेनल्टी बॉक्स में लगातार क्रॉस भेजकर दबाव बढ़ाया। 56वें मिनट पर कासेमीरो ने बाईं ओर से आए क्रॉस को सिर से मारकर गोल दागा और ब्राज़ील को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद तानाका आओ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम हुए, जिसका फ़ायदा उठाकर गैब्रियल मार्टिनेली अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागने में कामयाब हो गए और इस तरह जापान का नॉकआउट राउंड में पहली जीत दर्ज कराने का पांचवा प्रयास एक बार फिर विफल रहा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि उनकी सरकार विदेशी निवेश की और बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रही है। ताकाइची ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। ताकाइची ने सोमवार को नवगठित विदेशी निवेश समिति की पहली बैठक को संबोधित किया। मई में विदेशी मुद्रा विनिमय एवं विदेशी व्यापार अधिनियम में संशोधन पारित होने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। ताकाइची ने कहा, हम संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की जांच क्षमता सुधारते हुए विभागों के बीच समन्वय की कमी से बचना चाहते हैं। क्षमता सुधारने के लिए सरकार जानकारी साझा करने की व्यवस्था को समग्र रूप से मजबूत करेगी। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय समिति की सह अध्यक्षता करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करेंगे। समिति का प्राथमिक कार्य सरकारों और निवेशकों के उन प्रस्तावों की समीक्षा करना है जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ खास उद्योगों की जापानी कंपनियों के शेयर प्राप्त हो सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए बुधवार से भारत की यात्रा कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ताकाइची की मोदी से बृहस्पतिवार को मुलाकात होने वाली है। शिखर बैठक के मौके पर जापान और भारत आर्थिक सुरक्षा व एआई पर दस्तावेज जारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं। चीन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा संबंधी दस्तावेज में संभवतः दोनों देशों द्वारा आर्थिक दबाव का विरोध करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी निजी समन्वय को प्राथमिकता और बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जा सकता है। एआई संबंधी दस्तावेज में साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इसमें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की बात भी शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि ताकाइची जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च आर्थिक विकास बनाए रखने वाले देश भारत के साथ सामरिक साझेदारी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। जापान की प्रमुख वाहन कंपनियों ने मई में चीन में नए वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बिक्री पर असर पड़ा। चीन में वाहन बेचने वाली जापान की 5 प्रमुख कंपनियों में से 4 का कहना है कि उनकी कारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। सुबारू की बिक्री में 53.3%, जबकि होंडा की बिक्री में 48.6% की भारी गिरावट आई। निस्सान की बिक्री में 34.9% और टोयोटा की बिक्री में 31.7% की गिरावट देखी गई। केवल माज़्दा की बिक्री में 4.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। चीन में पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि दूसरी ओर ईवी बाजार में विस्तार हो रहा है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद そば भी खाया।
3: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: 楽しい旅行でしたね。
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: すごく楽しかったです।
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: たのしかったです
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: たのしい
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तनोशी देस
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तनोशिकत्ता देस
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: すごく楽しかったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: シンセツです
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: シンセツでした।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: たのしい旅行です
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देश्टा।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देश्टा का?
3: सुगोकु तानोशिकात्ता देस। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे कारा ओसोबा मो ताबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।